जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सत संगी जनों, आओ गुरु चरणा विच बैठ के आप जी अमृत बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन श्रवण करके अपने अंतर आत्मे नूं गुर शब्द नाल तृप्त कर रहे सी। महाराज ने बाणी विच एक बचन वरत्या है, गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे हर बंदा चाहुंदा है मैं कोई चंगा कर्म करा, पर सब कम्मां विचों जिहड़ा चंगा कर्म है सतगुरु ने शब्द वरत्या हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन कै करमा, सारिया कम्मां विचों जिहड़ा चंगा कर्म है वह गुरु की सतसंगत विच बहना है। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। महाराज कहन लगे जिस बंदे दा पूर्वला कर्म जाग पे, मथे दा भाग जा गया, सच जानो वह बंदा गुरु की सतसंगत कर लग पैंदा। एक मैं बेनती तुहानू होर करा, भगत रविदास साहब जी का बाणी विच एक बचन आउंदा है, वो शब्द आउंदा चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सो जस पूर राखो, मन सो मदकर करो चरण हिरदे धरो, अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सो जिन कटै, मैं तू मोल महगी लई जी सटै। इथों तक अर्थ की ने, भगत जी कहिंदे आ कहन लगे मेरा चित परमात्मा दे सिमरन विच लग गया, मैं नेत्रा नाल उस अकाल पुरख दे दीदार कर दे, रसना नाल उस परमात्मा दा नाम जप दे, कन्ना राही उदा नाम सुन दे, इथों तक मेरा मन भौरे दी तरह बन गया है, जिमें कमल दे फुल ते भौरा बह के सुगंध रस महक लैंदा है, मेरा अंतर आत्मा परमात्मा दे नाम दा रस माण दे। ते भगत जी ने एक गल पुछी, भगत जी ये अवस्था तुहाडी बनी किवें? उंज गुरु कृपा करें जे गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी नूं आपां पढ़िए विचारीए ते हर मनुख दी ए अवस्था बन जाए ते बहुत उहदे वडभाग ने। जे किसे दा चित सिमरन विच लग जाए, नेत्र गुरु के दीदार, कन्ना राही नाम सुनना, रसना राही जपना ते अंतर आत्मा परमेश्वर दे नाम दा रस माणे, उह वड्डियां भागां वाला बंदा है। ते पुछिया महाराज ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਭਾਵਨਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਸ਼ੋ, ਪੈਜ ਰੱਖੋ

बदला सिखा दो मारे जो निर्दोष बिचारे अज तक ओ बच्चिया ना संगा दी जो अणख वंगारे अज तक ओ बच्चिया ना सिंगा दी

रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे,

गुरपुरा हर नाम दृढ़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा। रहाउ बिन गुर मूड भए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलो जन्म सनाथा।

बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाउ नानक प्रभ अविनासी ताकी सेवन बिरति जासी आनंद करे तेरे दासा जा पूर्ण हुई अस बिलावल महला पांजेवा ताती वाव न लगे पार ब्रह्म शरण आई चो गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जन बणत बनाई राम नाम आव खुद दिया एका लिव लाई रहाओ राख लिए ते रखन हर सब व्याद मिटाई कौ नाने कृपा भई प्रभ भय सहाय सलोक जैसा तू गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू न छुट है निकट न जाइयो दू सलोक महला पंजेवा मन मह चित बो चित बनी उत्तम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरू हर देहु नानके मीत सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखी है करते का हुए बीचार तित कर गाव हो सोहला सेवर हो से जनहार तुम गाव हो मेरे नर पौका सोहला ओवारी जित सोहला सदा सुख हुए रहा नैत नैत जी अड़े समालियन देखे गादे बनहार तेरे दाने कीमत ना पावे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवे साहिब स्यों मेल कर कर इहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवान रागा समहला पहला छे कर छे गुर

दिन सुरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुरमेलिया नानक हर संग मीत अज दए पावन श्री मुखवाक पंचम गुरदेव शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित प्रतख हरि स्वरूप साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी का उचारण किया होया है अते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन राग जैतसरी अंदर सतगुरु पातशाह दे पावन अंग 703 तो आरंभ होके 704 उपर संपूर्ण हुंदा है। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो।

निरंजन सोए, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निधान। गावी है सुनी है मन रखी है पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई। जेहो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई।

विसर ना जाई। तीर्थ नहावा जित सुभावा विण भाणे के नहाए करी। जेती सिर ठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिब फरमाए तिब तिब पाहे जित

आवह जाहो। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्ताथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सोवे

हो ना कोई, जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सबको आखे एक दू एक सियाणा। वड्डा

ते मूर्ख खाही खाहे केत्यां दुख भूक सद मार एपे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख न सकै कोए जे को खाए काखण पाए ओ जाने जेतिया मुह खाए आपे जाने आपे दे अख से भेके के जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल अकर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आखै वेद पाठ पुराण आखै पढ़े करह वख्याण आखै बरमे आखै इंद आखै गोपी तै गोविंद आखै ईश्वर आखै सिद्ध आखै किते किते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुन जन सेव किते आखै आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे किते किते होर करे ता आख न सकै केई के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावार गावार सोदर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पौन पानी बह संतर गावह राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्यां दरनाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावै जोध महाबल सूरा गावै खानी चारे गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जनो पाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तस दी वड्याई जो तस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई

अनाद अनाहत जुग जुगे को वेस। एक दूजी बौ लख होहे लख होवै लख बीस, लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश, एत राहे पत पबड़िया चढ़िया हुए इकीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै न जोर, जोर ना मंगण देण न जोर, जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राज माल मनसोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते वरमे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेस। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेस, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाटत घड़ियै बहुत अनूप, तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महा बलसूर, तिन मह राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरह ना ठाके जाहे। जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करह आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड

केह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज केह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गण जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वा सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं लेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं नीले नमस्तं अनादे नमस्तं निषेदे नमस्तं अगाधे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएकै नमस्तं अनेकै नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं तर्माने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं तर्वर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्तजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुभन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अटा है अलेख हैं अपेख हैं नाम हैं काम हैं अते हैं अपेख हैं जीत हैं पीत हैं त्रिमान है निदान है तरवर्ग है सर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है तंद है बंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है जम है पूत है शूत है अलोक है शोक है अकर्म है परम है अजीत है पीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने।

अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इशनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अदो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेद्य अपेद्य नामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं जू हैं देस हैं पे हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृसं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धिं निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन आद सेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत धाम हूं न जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जा नहीं जेह भेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सो जा नहीं कहे देव तात मात ना जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्कर वक्र फिरै चतर चक मन ई पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापही जे जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जानही जे रूप रंग अर रेख परम वेद प्राण जाके नेत भाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवही वह चित मद भार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार आसन भंग उपमानंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनासा जान बाहु शाहन शाह
राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग आबा अपंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मितगत अखंड अलिस्या कर्म अदृश्या धर्म सर्वा परनाढ्य अंडन वाढ्या चाचरी छंद तुअ प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरि अंकरियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चकर करता चतुर चकर हरता चतुर चकर दाने चतुर चकर जाने चतुर चकर वर्ती चतुर चकर भरती चतुर चकर पाले चतुर चकर काले चतुर चकर पासे चतुर चकर वासे चतुर चकर मान्या चतुर चकर दान्या चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रतीस अदीस अदृश अग्रस भगवती छंद तुअ प्रसाद कथते के आशिज देस है क्या पिज भेस है क्या गंज करम है क्या भंज भरम है क्या पिज लोक है क्या दित सोक है क्या बधूत वरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है कि अशोक वरने के सर्वा भरने के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपा अनुप है कि आदा देव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के कैदीन है के रोजी रजाक है रही मैं रिहाक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहंद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्या है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र सदैवंग प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फीम है के अकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुस्नुल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाद स्वरूप है नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिवादे अगंजे अगाधे सुपंग सर्व भागे सुसर्वा अनुराग है त्रिभुक्त स्वरूप है शज है शूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवंग सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद भंग है नंग है भेख है लेख है भरम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है वह है भूत है तूत है नास है उदास है तंद है बंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है देख है अलेख है भेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद
त्वा प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे भंगं विपूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कमाल है के सुनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है रीफुल सुकान है रासुल फकान है कलंकंग प्रणास है समस्तुल गनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाए करीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है देसुल अलेख है मेसुल अभेख है जमीन उल जमा है अमीक उल इमा है करीम उल कमाल है कि जरूरत जमाल है के तलंग प्रकाश है किमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है किमितो पसा है के आत्म प्रभा है के तलंग अनंग है किमितो भंग है मद भार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरवर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड पर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनचिज अंग असन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास अजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जना बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट पार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणा लय है अरका लय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करने मन माने है जग जाने है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मांड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है अजप अजप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी त्रित है मतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है पव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाति छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बांके अभंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे एक श्री छंद अजल भू अजु अनास अकाश अगंज भंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेख अनाम अकाम अगाटा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं परमं अगंजे लेखे पुजंग प्रयात शांद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे गंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी
क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विवे पूते गजायब गनीमे हरियंकरियं क्रीमल रीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विपूते एको ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सुवइये श्रावक शुद्ध समूह सदान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली विद न्यावत सीस ना जात विचारे एते भय तो कहां भय भूपत अंत को नंगे ही पाए पधारे जीत फिरें सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत हैं हाय राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिनंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक विसेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार के देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंग अनुमान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर अब चारे सार की धार पछैया तोर तो देश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जायत धुन पापन के बो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नात फिर लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास की ओ बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पान पूज तरयो सिर काहू ले लेंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में है काहू पछा को शीस निवायो कौ बुतान को पूजत है पस कौ बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो कूर किरिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो कूर किरिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो एको अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब एरन को आज संगरिए
पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तो जुजू करियो और अच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदन ते कै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पुशानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जाबा करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महा मूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, ओत भुज खान बोहर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अवरचा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे असतो जितव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जबन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते हैं, ताके काल निकटने हैं। रचा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट ट्रेत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नि हर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह छु सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठोर मोह हो सहाई।

रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कित्त जिचर हर रस पल्लै ना पाए।

सतगुर मिलै जिसे आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, ता तू जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मैं आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जगत दिखाया। गुरप्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मैं आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभु आप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुरप्रसादी हर मन वस्या, पूर्व लिखिया पाया। कहना न गुरप्रसादी जिना लिव लागी, तिन्नी विचे माया पाया। हर हर हर जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुरप्रसादी हर मन वस्या, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुरु स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुरप्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर ना कोई, कह नानके नेत्र अंध से। सतगुर मिले दिव्य दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो। सच है सुनने नो पठाए, सच है सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ। रसना रस समाणी सच।

खंडा जाके हाथ में कलगी सो है, सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी धर, सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी धर। जग बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

राखो शरणाई, अम्या दृष्ट शुभ करे हरय अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल, सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे, गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे, सो कह टल गुर सेविए एहन सहज सुपाए, दर्शन

अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सत दारा स्यों प्रीत लगाई।

सारे जग बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन कल राखी मेरी सो कहो टल गुर सेवी है एहन सहज सुपाय दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवां छंत घर पहला

प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवैत संतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रिय हबे सखियां

लालन तै पाया आप गवाया जय धन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हो किदी गुण अवगण ना पछाने गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेदी सा मैं पाई।

जो दियो सोई मिले आगै जाए कै नदी नाव को संजोग सुजान कुटांब लोग होए गो जो दियो सोई मिले आगै जाए कै असन बसन धन संग ना चलत चले अर्पे दीजै धर्मशाला पहुंचाए कै आठो जाम साठो करी निर्फल माया मोह सफल पलक साध संगत समाए कै

0: संत हस के सी मुखो इंज बोलिया,
1: संत हस के सी मुखो इंज बोलिया,
0: हसो हीन है सवाल तेरा बोलिया,
1: हसो हीन है सवाल तेरा बोलिया,
0: हसो हीन है सवाल तेरा बोलिया,
1: हसो हीन है सवाल तेरा बोलिया,
0: पत्ता पत्ता होया बैरी सिख कौम दा,
1: करे सत्कार कोई ना,
0: पत्ता पत्ता होया बैरी सिख कौम दा,
1: करे सत्कार कोई ना,
0: असी कदे ना खालस धन मंग

0: मूरे रखिए केवल राजनीति
1: आड़ लेंदे ने धर्म दी हैगी कुर्सी दे नाल प्रीति
0: धर्म छड़िया मूरे रखिए केवल राजनीति
1: आड़ लेंदे ने धर्म दी हैगी कुर्सी दे नाल प्रीति
0: फड़ ले सिखा गल जा हां फड़ ले।

0: संत गए पर जार नू पाया बापियां बंबे सी केरा
1: संतां दा तब वेख के फड़े कौन ते कीदा सी जेरा
0: संत गए पर जार नू पाया बापियां बंबे सी केरा
1: संतां दा तब वेख के

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना

हरी सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई सोवैया पाए गहे जाबते तुमरे ताबते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानेओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जानेओ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिति मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार उह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडे आईया कह नानक सुनहो संता हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वेसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी